0: की। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरु मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के खुला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 77,116 पर, जबकि निफ्टी 24,098 पर बना हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit in New Delhi last night, the Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. Union Minister of State for Minority Affairs and Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, George Kurian, has resigned from the Union Council of Ministers. President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Mr. Kurian with immediate effect. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that the India-UK Comprehensive

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे हैं जगमोहन शर्मा।
2: नमस्कार, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री जम्मू कश्मीर से समाज सेवा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ हैं ब्रिजलाल भट्ट जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपको किन किन कामों के लिए ये मिल रहा है।
3: देखिए, अभी जो आपने बताया मुबारकबाद मुझे आप दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, तो ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन के जरिए होता है, इसलिए ये मैं समर्पित करता हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया नागडंडी के माध्यम से समाज सेवा कश्मीर में करने का। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जो हंड्रेड्स कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज में शामिल हैं। मैं खास तौर पर ये समर्पित करता हूँ कश्मीर में जो नई पौध है, हमारा जो यूथ है उनको।
2: आपके बारे में हम जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अब आप समाज सेवा के साथ जुड़े हैं। आपका ये सफर समाज सेवा के साथ जुड़ने का कब शुरू हुआ और कैसे आप प्रेरित हुए, आपका रुझान इस तरफ किस तरह से हुआ?
3: मैं गांवों की पैदावार हूँ, अनंतनाग का रहने वाला हूँ। नागडंडी अनंतनाग से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो बचपन से जुड़ा था, लेकिन सेवा में था, सेवा के सारा आयामों में, और खास तौर पर 90 में पलायन हो गया, निकल गए। तो उस टाइम

0: मेरे दिल में ये बात आ गई कि ये जो सर्विस के बाद मैं कश्मीर में ही रहूं ताकि ऐसे कुछ कार्य करें जिससे ये विस्थापित समाज जो है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े।
1: जी
0: तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे 850 ये जो प्रकल्प, जिसमें नागडंडी भी एक प्रकल्प है,
1: जी
0: तो सब प्रकल्प में या जितने भी 1,000 केंद्र हैं सारे भारतवर्ष में, उनमें सारे एक्टिविटी चलती रहती हैं। संस्कार वर्ग में हो, योग वर्ग में हो, स्वाध्याय वर्ग में हो, केंद्र वर्ग में हो, ये एक्टिविटी नॉर्मल सब यूनिट्स में चलती है। लेकिन कन्याकुमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि इन एक्टिविटीज के साथ जो ऑब्जेक्टिव में हमारे हैं, कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्टिव एडिशनली जोड़े जिससे ये जो विस्थापित समाज है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े, जिससे कश्मीर में पीस प्रमोट हो और इंट्रा एंड इंटर स्टेट इंटीग्रेशन प्रमोट हो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी।
1: जी, आपने विवेकानंद की बात की, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भाईचारे का, और जैसा भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब है। आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज के जरिए आप कश्मीर घाटी में प्यार का, अमन का संदेश पहुंचा रहे हैं?
0: हम विवेकानंद थॉट मिशन को लेके वहां काम करते हैं। तो नेशनल एक्टिविटीज में हमारा 10 दिन का योग शिक्षा शिविर होता है नागडंडी में, जिसमें 15-20 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है।
1: जी
0: आपको छोटा सा भारत नजर आता है वहां पर। स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होता है, वो उसमें भी बाहर के स्टेट्स का पार्टिसिपेशन और हमारे JKUT का भी पार्टिसिपेशन होता है। वो आध्यात्मिक उस रूप में करते हैं। हमारा संस्कार वर्ग में बच्चों का प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, जो कश्मीर में हम करते हैं। वहां हमारे बच्चे या बच्चियां काम करते हैं, सर्विस करते हैं, हम उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं,
1: जी
0: तो उनको हम संस्कार वर्ग में उनके साथ उनको जोड़ना चाहते हैं। नागडंडी के साथ जुड़े भी हैं। अभी हमने 3 दिन का हमने संस्कार वर्ग में प्रोग्राम किए। ऐसे अब ये जो हम पीस प्रोसेस वहां करते हैं, पीस प्रोसेस जो मेरा मानना है, तब तक पीस प्रोसेस बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती जब तक सिविल सोसाइटी मीट्स ना हो।
1: जी
0: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ, उनकी नजदीकियां ना बढ़े,
1: जी
0: वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई
1: जी
0: थी, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना है। मैं तो ये समझूंगा इस वक्त जो टॉर्च बेयरर्स कश्मीर में हैं, जो मैं काम करता रहता हूं, मुझे लगता है ये यही यूथ है, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो। हमें तो अब फॉलो करना चाहिए,
1: जी
0: हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर हमने सोच रखी होती 89-90 में, हमने बुजुर्गों ने अपना रोल अदा किया होता, तो ये 36 साल का पलायन नहीं हमने देखना पड़ता। तो इस वक्त जो यूथ काम कर रहा है, यूथ समझ गया है ऐसी वैसी एक्टिविटी से कुछ नहीं निकलेगा, जो कुछ निकलेगा प्यान से निकलेगा, और इसके रिजल्ट्स निकल गए। अभी मैं बता रहा हूँ अपना तजुर्बा, 2010 से मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ। मेरा टीम है बहुत बड़ा, उसमें हमारी मातृशक्ति भी है, उसमें हमारी युवा शक्ति भी है। तो हमने ये देखा कि इस वक्त एक चेंज नजर आई है, हर जगह हमारा ये जो दीप जल रहे हैं, जहां जहां अंधकार है वहां रोशनी हो रही है, और इस वक्त आप नौजवान के हाथ में कलम देख रहे हैं, और रिजल्ट है। हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, गाँव का एक नौजवान वो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, कंपटीशन से आया है। इसी तरह कुलगाम में यंग बॉय कंपटीशन से आया है, श्रीनगर में यूथ है कंपटीशन से आया है। तो ये रियलाइजेशन आने लगी, और खास तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो ये समझने लगे बच्चों को हमें संस्कार वर्ग में ट्रेनिंग देनी है, पढ़ाई की ट्रेनिंग देनी है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, योग शिक्षा शिविर होते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होते हैं, आपका ये जो बाकी प्रोग्राम यूथ मीट्स होते हैं, तो संस्कार ये नेशनल प्रोग्राम्स हैं,
1: जी
0: हर जगह होते हैं। एडिशनली जो हमने कश्मीर के लिए किया है, वो ट्रेडिशनल जो हम इवेंट्स किया करते थे, जैसे रामनवमी का हवन है वहां हर साल होता है, नागपंचमी का हवन है हर साल होता है, ज्येष्ठ अष्टमी माता खीर भवानी का हर साल होता है। बल्कि 97 में एक हमने सोचा कि हम एक ऐसी जगह लें कश्मीर में, सेंट्रली लोकेटेड हो कश्मीर में, जहां हर साइड से हर डिस्ट्रिक्ट से आराम से लोग आ सके। ये प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा, उस टाइम के सिचुएशन को नहीं, आगे क्या होगा। तो हम ऐसी जगह का चयन करें जो मैनेजेबल हो फेयरली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। हम ऐसी जगह लें जिस पर टोटल आस्था हो कम्युनिटी की,
1: जी
0: डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी।
1: और
0: तो खीर भवानी का चयन हो गया, वो जगह ले ली। आपको मैं बताऊं, मैं उस टाइम ब्यूरोक्रेसी में था लेकिन नागडंडी के साथ जुड़ा था, तो 2 ट्रक्स में नागडंडी से सामान आया, 300 GI शीट्स, पोल्स लाए और लेबर

0: 20-25 लाए, लेकिन वो जो हमारा यूथ है तो वहां शड बनाया खीर भवानी में, ताकि उसके शड के नीचे हम ये भंडारा सेवा शुरू करें। तो 97 में शुरू किया, 400-500 लोग थे, लेकिन चलते चलते इस साल हमारा 27वां साल था, तो 30,000-35,000 लोग वहां आए, विस्थापित लोग, उसमें हमारी बहनें, हमारे जो भाई बच्चे उसमें होते हैं, इतने ही मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी वहां होते हैं
1: जी।
0: अब इट्स नॉट ओनली दैट, मैंने देखा ये जो 97 से, वैसे मैं फिर 2010 से चेयरमैन भी रहा हूं, मैं देखता रहा एवरी एनुअली ग्रेजुअल इंक्रीज
1: जी।
0: तो वहां केंद्र बना, फिर देन इट बिकेम अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इसको हम, ये जो पीस वहां खड़ा हो गया, आराम से लोग आते हैं करते हैं, ये पीस कैसे लेटरली परकुलेट हो
1: जी।
0: तो अभी आपको मैं बताऊं, और खुशी है मुझे कि ये 15-20 जगह ऐसे हवन होते हैं कश्मीर में, चाहे आप बारामूला कुपवाड़ा में देखो, शुपियान मंजगांव में देखो, आप दिवसर कुलगाम में देखो, लोगरीपोरा में देखो, अकिनगांव में देखो, लुगबोन में देखो, सारे कश्मीर में ज्येष्ठाष्टमी के ऐसे हवन होते हैं। तो पीस प्रोसेस हो गई, और ये हवन भी, इसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिस्टिक सपोर्ट रहता है इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सपोर्ट एनकरेजमेंट होता है, तो ये चलते आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इसका हर साल ये असर होता है।
1: अब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो इसको भारत के सर का ताज कहा जाता है, और अपने आप में ही एक छोटा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग जबान बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं। और जम्मू कश्मीर की हम पूरी बात करें, जम्मू शहर जो बसा है, यहाँ शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते देखा। कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ अरमदारे कश्मीर, जिन्हें नंद ऋषि भी कहते हैं, वहां पर हिंदुओं और मुसलमानों की एक जैसी आस्था रही है। आप महाराजा हरि सिंह के समय की बात करें तो वहां एक मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू राजा और सभी खुशहाल उसमें रहते हैं, ये खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की। लेकिन बदकिस्मती से एक दौर ऐसा आया कि हम अंधेरे की तरफ चले गए, गुमराह हो गए, या जिस तरह से भी। आज आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर तेजी से खुशहाली, तरक्की, अमन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है?
0: देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐसी बात छेड़ी, आपने विद रेफरेंस रिकॉर्ड, मैं प्रैक्टिकली आपसे बताता हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली थी अनंतनाग में, 40-50 लोग इस फैमिली में थे, एक साथ रहते थे, इंटीग्रेटेड थे, तो सब बच्चों का, हमारे सारे बच्चे जो हैं ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं। तो हमारा ये था कि सवेरे उठना, 4:15 उठना, तो इंद्रनाग है वहां पर, चश्मा है, उधर नहाना, फिर केंद्र में जाना, गुरुद्वारा में जाना, वहां से प्रसाद लेना, उसके बाद हम देवी बल था उधर, प्रसाद लेना, ऋषि साहब के जियारत के पास जाना, प्रसाद लेना, वो देते थे शीरीन, वहां हम चक्कर लगा के फिर हम घर जाते थे, फिर हमें चाय मिलती थी। ऐसा मेरा ही नहीं, सब बच्चों का ऐसा होता था। यही हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनमें भी यही संस्कार थे, और इन संस्कारों की वजह से हमारा बचपन जो ऐसा है, मैं इस वक्त सोचता हूँ मेरे दोस्त उस टाइम कहाँ थे, वही मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे, जबानी याद, गुरुद्वारा एक जगह, मंदिर एक जगह, और शेरबाग नीचे, तीनों एक जगह थे, किसी ने किसी का एक इंच नहीं खाया
1: जी।
0: अब इसको तो मैं कह रहा हूँ, और बचपन में जब हम जाते थे, निकलते थे, मुझे आशीर्वाद मिलता था, जो हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी की फैमिली एल्डर्स, मेरे पिताजी के दोस्त और अपने पंडित बरादरी के जो एल्डर्स थे दोस्त, इतना हमारा भाई रहता था उनका, हम गलत काम नहीं कर सकते थे। मैं मुस्लिम वाले में ही रहता था, मुसलमान का बच्चा जो मेरे से छोटा, मेरे साथ तेजी से भी नहीं बात कर सकता था। अगर मैं बोलूंगा वो हो गया, ये हो गया, तो मैं रिवर्स गियर में जा रहा हूँ, हमको आगे चलना है। हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे जो हैं, एक साथ हैं। और आपको एक खास तौर पर मैं सारे नेशन को बताना चाहता हूँ, ये जो 5-6 हजार बच्चे विस्थापित समुदाय के वहां गए हैं, आई कीप टेलिंग देम, यू आर द एम्बेसडर्स, आप में हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा। दे हैव नॉट गॉन देयर टू सर्व मॉनिटरी बेन्स के लिए, वो तो करना है, वो इसलिए गए हैं कि उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू ने लाया है। आई हैव इंस्टेंसेस, मोस्ट ऑफ देम, एक कुपवाड़ा बारामूला में रोहित रैना है, वो अच्छे काम कर रहा था बाहर, तनख्वाह भी अच्छी ले रहा था, मिसेज भी सर्विस कर रही थी, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो वापस आ गए हैं, वहां अपने कुपवाड़ा में सेटल हो गए हैं, बारामूला में सेटल, ऐसे बहुत से बच्चे हमारे, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो वहां काम कर रहे हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं, सारे 5-6 हजार बच्चे जिनको मैंने कहा एम्बेसडर, इतने ही नए बच्चे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समझ लिया कि ये जो कंपोजिट कल्चर है, ये क्या था
1: जी,
0: कश्मीरी पंडित क्या था,
1: असली खूबसूरती वही थी
0: एक गुलदस्ता था, अलग अलग फूल थे
1: जी,
0: और वही होगा जो इस वक्त का मैं

0: ऐसे बहुत से बच्चे हमारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो वहाँ काम कर रहे हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं सारे 5-6 हजार बच्चे जिनको मैंने कहा एम्बेसडर, इतने ही नए बच्चे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समझ लिया कि ये जो कंपोजिट कल्चर है ये क्या था
1: जी,
0: कश्मीरी पंडित क्या था,
1: असली खूबसूरती वही
0: थी, एक गुलदस्ता था, अलग अलग फूल थे
1: जी।
0: और वही होगा जो इस वक्त का मैं देख रहा हूँ। देखिए रिटायरमेंट के बाद आई शुड ऑल्सो हैव बीन विथ माई चिल्ड्रन, आई शुड हैव गॉन, इधर उधर सब जाते हैं। मुझे फख्र है कि आई एंजॉय द डिस्टिंक्शन कि मैंने फैसला किया उसके बाद नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए।
1: भट्ट साहब, आखिर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज जो माहौल है खुशनुमा माहौल है, हम तेजी से अमन की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हर एक इंसान का, हर एक जम्मू कश्मीर वासी का क्या फर्ज बनता है कि इस माहौल को और सपोर्ट करें और एक बार फिर जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर बन जाए जो कुछ वर्ष पहले हुआ करता था।
0: देखिए एक माहौल था कश्मीर में, बच्चा कोई गलती नहीं करता था, कहीं से भी बाहर से भी शिकायत आई या कहीं से भी आभास हो गया पिताजी को या माताजी को कि बच्चे ने ये कर दिया, उसको डांटते थे
1: जी,
0: वो समझते थे, पेरेंट्स विजिलेंट थे। लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ ये जो वॉच नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे को पेरेंट चाहे तो बच्चा कोई गलत काम करे, अगर करता है दैट इज द पेरेंट फेलियर।
1: जी, यही आप कहना चाहते हैं कि हर एक नागरिक को एक विजिलेंट होके काम करना है,
0: Correct.
1: एक निगरान बनना है, अपने बच्चों पे नजर रखनी है, नौजवानों पे नजर रखनी है, ताकि दोबारा से हम पटरी पर जो आ गए हैं दोबारा से हम पथ भ्रष्ट ना हो, पटरी से ना गिरे।
0: एक चीज और बताना चाहता हूँ दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड वेरी क्लियर। ये जो मैं कह रहा हूँ देखिए इसको कैश करने की जरूरत है। हमारा जो नौजवान इस वक्त कश्मीर में है उनका जोश और पेरेंट्स का होश
1: जी,
0: जब एक यूनिसन में आएगा कश्मीर फिर वही गोशवारा बनेगा, कश्मीर वही फिर गुलदस्ता बनेगा, कश्मीर वही फिर टॉर्च बेरर बनेगा, नॉट ओनली फॉर इंडिया फॉर होल ऑफ वर्ल्ड बिकॉज वी बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और मुझे उम्मीद है भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए हमारे कश्मीर के यूथ का, चाहे किसी भी फेथ से हो, आगे आगे हमारा यूथ होगा, ऐसा मेरा मानना
1: जी। तो भट्ट साहब, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे थे जगमोहन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपने प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

खूबसूरत यात्रा को नहीं भूल सकते हैं। जी हाँ, तो आप भी इस यात्रा की पेटी को बांधिए और सबसे पहले हम सुनेंगे इन सुंदर पहाड़ियों के लिए ये सुंदर गीत।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं अंशु अग्रवाल को। तो अब वक्त है आज के भारत भ्रमण का। तो आज भारत भ्रमण पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पहाड़ों की रानी, जी हाँ, यानी ऊटी की तस्वीर। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित ऊटी तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और बेहद खूबसूरत है, सच मानिए। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बगानों, बादलों से ढकी पहाड़ियों और सुखद मौसम के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मौसम और ये शहर दोनों बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसे में हम इस शहर की टॉय ट्रेन की

जी हाँ, तो आज हम जिस पहाड़ियों के बीच में जिन सफर पे निकले हैं, वो सफर है, वो तस्वीर है ऊटी की। ऊटी के इतिहास की अगर हम बात करें तो ऊटी का इतिहास नीलगिरी पर्वतमाला में रहने वाली टोडा जनजाति से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले यह क्षेत्र टोडा समुदाय का निवास स्थान हुआ करता था। साथ ही 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र की खोज की और ऐसा कहा जाता है कि सन 1824 में एक शख्स जिनका नाम था जॉन सुलिवन आए और उन्हें यहाँ का मौसम, यहाँ का नज़ारा, यहाँ की पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत लगी, इतनी पसंद आई, और क्यों भी ना आती, ऊटी शहर ही ऐसा है, इतनी पसंद आई कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में इस शहर को विकसित करना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, धीरे धीरे ऊटी मद्रास प्रेसिडेंसी की समर कैपिटल बन गया और अंग्रेजों ने यहां पर चर्च, बंगले, सड़कें और बाग बगीचे विकसित करने शुरू कर दिए। अब बात करें यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध एक पर्वतमाला, आप सोचिए कौन सी पर्वतमाला की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, नीलगिरी पर्वतमाला, जो ऊटी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नीलगिरी का अर्थ है नीले पर्वत। सोचिए, सोचते हुए ही कितना खूबसूरत मंजर ये लगता है ना। और सोचिए जब हमें वहां जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज इस तस्वीर कार्यक्रम में हम वहां कैसे जा सकते हैं, वहां जाकर हम क्या खरीद सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, इन सारी तमाम बातों के बारे में हम लोग यहाँ जानकारी लेने वाले हैं। तो कहा जाता है कि जब यहाँ पर पाए जाने वाले विशेष फूलों से और दूर से दिखने वाली ये नीली आभा के कारण इन पहाड़ियों को नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जी हाँ,

0: जी हाँ दोस्तों, गजब का है ये दिन। और ये दिन गजब का इसलिए है क्योंकि हम निकले हैं नीलगिरी, नीले पहाड़ों की जो वादियां जहां पर स्थित हैं, यानी आज की तस्वीर ऊटी के नाम। हम बात कर रहे हैं ऊटी शहर की। और ये जो गीत आपने सुना, ये गीत आप तक पहुंचाने का मेरा एक मेन मोटिव था। और वो मोटिव ये था कि इस गीत की जो शूटिंग हुई है वो आपके शहर जहां हम बात कर रहे हैं ऊटी में हुई है। जी हाँ, सो ऊटी एक बहुत ही खूबसूरत घूमने का शहर तो है ही, साथ ही यह बॉलीवुड का एक आउटडोर स्टूडियो भी माना जाता था, जहां हमारी फिल्म के बहुत से मशहूर गीतों की शूटिंग हुई है। आपको बताना अब ये है कि ये जो गीत आपने सुना, इतना तो पता लग गया कि ऊटी में इसकी शूटिंग हुई है, लेकिन ऊटी में किस जगह इस गीत की शूटिंग हुई है ये आप मुझे बताएंगे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आपने ट्यून किया है और आज की तस्वीर में ऊटी। अब बात करेंगे ऊटी के मौसम की। तो दोस्तों, ऊटी का मौसम पूरे साल भर बहुत ही सुहावना रहता है। बात करें मार्च से जून तक तो हल्की गर्मी रहती है, तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय समय यही माना जाता है। जुलाई से सितंबर तक थोड़ा मॉनसून रहता है, हरियाली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और झरने और घाटियाँ अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। अक्टूबर से फरवरी में तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन जो शांत वातावरण को पसंद करते हैं उनके लिए यह समय एकदम आदर्श माना जाता है। अब बात आती है कि ऊटी आखिर हम पहुंचे कैसे, कैसे जाएं, बिल्कुल बताएंगे।

आ गया ना दोस्त, ये गीत सुनते ही आपकी आंखों के आगे एक चित्र सामने आया, और वो चित्र है कि एक रेलगाड़ी है, वादियों से घिरी हुई, धुआं आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जी हाँ, ये जो सीन था, ये जो वादियां हमने इमेजिन की है, ये है नीलगिरी माउंटेन रेलवे की यात्रा। ये जो गीत है चल चैया चैया, ये गीत ऊटी की उसी जगह पर शूट किया गया है, और बहुत ही सुंदर रेल यात्राओं में से एक यात्रा ये मानी जाती है। और इतना ही नहीं, इसके लिए इसको यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित एक मान भी दिया गया है। और जैसा कि अब हमने मौसम की बात कर ली है, तो हमारे जहन में बात आती है कि आखिर यहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो हवाई मार्ग की अगर हम बात करें, तो ऊटी से सबसे निकट हवाई अड्डा है कोयम्बटूर। तो आप अगर हवाई से यात्रा अपनी प्लान कर रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं। अगर रेल मार्ग की हम बात करें, तो रेल मार्ग यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन बहुत ही प्रसिद्ध है, जो ऊटी से चलने वाली एक यात्रा है, और आप इसके माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से अपनी यात्रा को प्लान कर रहे हैं, तो बेंगलुरु, मसूर, कोयम्बटूर और चेन्नई से सड़क मार्ग द्वारा बहुत ही आसानी से ऊटी तक पहुंच सकते हैं।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। ट्यून किया है आपने 100.1 MHz। और आज की तस्वीर में हम बात कर रहे हैं ऊटी की। तो ऊटी हम पहुंच चुके हैं, लेकिन पहुंचने के बाद ऊटी में आप कहां कहां घूमे, बात करेंगे वहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। अब ऊटी जाए और ऊटी की झील पर अगर ना जाए तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो ऊटी की झील अपनी चेकलिस्ट में सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऊटी की झील सन 1824 में बनाई गई एक बहुत ही कृत्रिम झीलों में से एक है। यहाँ बोटिंग, साइकिलिंग और परिवार के साथ मनोरंजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं डोडा बेटा पीक पर। यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से आप

पूरी घाटी और आसपास के पर्वतों का शानदार दृश्य देख सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद आप बोटैनिकल गार्डन जाना ना भूलें, क्योंकि यह सन 1848 में स्थापित लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ हजारों प्रकार के पौधे और फूल को उगाया जाता है जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं रोज गार्डन। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े गुलाब उद्यानों में से एक है ऊटी का रोज गार्डन, जहाँ पर तरह तरह के हजारों किस्मों के गुलाब आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद ऊटी जाएं और चाय के बागानों में ना जाएं, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऊटी की पहचान है इसके विशाल चाय के बागान। जी हाँ, यहाँ पर पर्यटक चाय की खेती और निर्माण प्रक्रिया, चाय की पत्ती कैसे बनाई जाती है, इसको भी बहुत करीब से देख सकते हैं। इसके बाद में ऊटी की संस्कृति, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खाना पीना और वहाँ की संस्कृति को हमारे साथ ज़रूर हमें सम्मिलित करना चाहिए। ऊटी की संस्कृति की अगर बात करें तो वहाँ पे तमिल परंपरा और जनजातीय विरासत का एक सुंदर मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ, जैसे कि शुरुआत में हमने बात करी कि टोडा जनजाति तो वहाँ है ही, साथ ही कोटा, कुरुम्बा, इरुला, यह सारी जनजाति भी अपनी विशिष्ट वेशभूषा, हस्तशिल्प और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जानी जाती है। साथ ही वहाँ के स्थानीय भोजन की अगर हम बात करें तो ऊटी में दक्षिण भारतीय भोजन विशेष रूप से लोकप्रिय है। मुख्य व्यंजन की अगर बात करें तो इडली, डोसा, सांबर, उत्पम और साथ ही बहुत ही वहाँ की प्रसिद्ध है फिल्टर कॉफ़ी। इसके अलावा यहाँ की घर में बनी चॉकलेट्स और नीलगिरी चाय विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ऊटी जाएं तो यह सब चीज़ों का आप आनंद ज़रूर उठाएं। तो आज की जो यात्रा थी ऊटी की थी, ऊटी में हमने बहुत कुछ जाना और ऊटी जाकर क्या खरीदना है ये तो हम भूल ही गए। ऊटी में आप खरीद सकते हैं नीलगिरी चाय, घर में बनी चॉकलेट्स, वहाँ के मसाले बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और साथ ही हस्तशिल्प की वस्तुएं। आज की तस्वीर में ऊटी की जानकारी बस इतनी ही और कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम

0: का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और हमारे श्रोता हमें निरंतर ईमेल कर रहे हैं और एक बार अपना प्रश्न फिर से बता देते हैं कि भाई परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है। हमें लिख भेजिए, हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com पर जल्दी जल्दी भेज दीजिए, हम आपके जो उत्तर है उन्हें अपने कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना उत्तर हमें कि परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है।
1: और कल्पना, एक और संदेश आ गया है मेरे पास, ये लिख रही है भारती दिल्ली से। वो कह रही है कि परिवार के साथ बिताए गए पलों में सबसे खूबसूरत याद मेरे माँ के जन्मदिन की है। जब मेरी मदर 50 साल की हुई तो हमने सारी तैयारियां चुपके चुपके कर ली और केक मंगवाया। जैसे ही माँ कमरे में आई हम सब ने मिलकर उन्हें दिया सरप्राइज। सच बताऊं उनकी आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान देखकर लगा अरे वाह, ये पल तो सबसे अनमोल है। और आज भी उस दिन को याद करके हमारा मन खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल, और मैं सच बताऊं आप जब ऐसे SMS ये जो भेज रहे हैं संदेश इनको पढ़ के तो मेरा भी मन इतना खुश हो रहा है
1: जी, अपनी माँ की याद आ रही है।
0: हाँ, दूसरे जब इतनी खुशी खुशी लिख रहे हैं उनके जो वाइब्स हैं वो अपने अंदर भी महसूस कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठे हुए। तो आप सब अपने जो उत्तर हैं वो हमें लिखते रहें, भेजते रहें। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक जानकारी है आपके लिए बहुत अच्छी कि एक शेर है, उससे शुरुआत करना चाहूंगी कि जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं।
1: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी ताकत पर भरोसा रखते हुए दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के पहले महिला पुलिस थाने की शुरुआत की गई है 19 जून 2026 से। महिलाओं को और बच्चों को बेहतर सुरक्षा देने हेतु पुलिस उपस्थिति द्वारा जल्दी, जिसको कहते हैं ना कई बार देरी हो जाती है जांच प्रक्रिया में, तो त्वरित जांच होगी और इस तरह से जो समाज है उसको बेहतर परिणाम भी मिलेंगे।
1: और भाई कल्पना, इससे महिलाओं और बच्चों के जो अनुकूल पुलिसिंग सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है और शिकायतकर्ताओं के लिए एक सहयोगात्मक और संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। और पुलिस थाने में मुख्य रूप से महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे पीड़ित महिलाएं और बच्चे प्रशिक्षित अधिकारियों के साथ सहजता, विश्वास और सम्मान के वातावरण में संवाद कर सकेंगे। भाई ये तो बहुत अच्छी पहल है, प्रत्येक महिला को समय पर सहायता, सुरक्षा और न्याय जो सुनिश्चित किया।

0: किया जाएगा। तो भाई दिल्ली पुलिस की इस ऐतिहासिक पहल पर तो हमारी तरफ से और सब मुझे लगता है सबकी तरफ से शाबाशियां तो होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, शाबाशियां भी होनी चाहिए, साथ ही हमें इतना सुकून हो रहा है कि भाई हमें एक ऐसी सुविधा
0: सहारा
1: जो
0: मिल गया है ना, कितना।

0: दोस्तों, अभी ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और अब हम अपने श्रोताओं के एक बार ईमेल और देख लेते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा है।
1: जी बिल्कुल, राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी गांव, चौधरी वसल हिसारगढ़ से ये कह रहे हैं, रश्मि जी और कल्पना जी, एफ एम गोल रोजाना सुनता हूँ और अपने परिवार में हंसी मजाक के साथ रहते हैं और रेडियो का बहुत बड़ा परिवार मेरे साथ है।
0: बिल्कुल। और एक ईमेल और आया है हमारे पास वैशाली रहेजा जी का। ये लिखती हैं कि वैसे तो परिवार के साथ बिताया हर लम्हा खास होता है, लेकिन हमारे मनाली की वो ट्रैवलर ट्रिप सबसे यादगार थी। सासू माँ का साथ, दोनों ननद की मस्ती, बच्चों का हुड़दंग और ऊपर से हमारे मजाकिया जीजू की वो मजेदार कॉमेडी, सबने मिलकर पूरे रास्ते फुल एंजॉय किया।
1: अच्छा,
0: रास्ते भर हंसी मजाक और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के बीच हमें एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मजा और सुकून सिर्फ अपनी हंसती खेलती फैमिली के साथ में ही है। और एक बात और दोस्तों कहना चाहूंगी कि भाई कई बार लोग बोलते हैं भाई मैं ससुराल वालों के साथ घूमने में मजा नहीं आता। वैशाली जी, आपने ये बात लिख के सच में बहुत सारे लोगों का भ्रम तोड़ा है। हमें भी ससुराल वालों के साथ रहने में बहुत मजा आता है, कहीं घूमने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है
1: और परिवार के साथ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और वो कह रहे हैं कि हम लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति और अनमोल बातें, और साथ में कह रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं, कह रहे हैं कि परिवार वो सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर हर कोई शांति महसूस करता है। बढ़िया संदेश।
0: और नवीन भाटिया जी भी लिखते हैं कि परिवार के साथ सबसे सुंदर पल हमने अपने मम्मी पापा के साथ बिताए हैं स्कूल के दिनों में। उन दिनों में हमारी सारी चॉइस जो है वो पूरी हो जाया करती थी। माता पिता तो करते ही है हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी। ऐसा ही एक और ईमेल हमारे पास आया है राधा शुक्ला का। वो लिखती है सबसे खूबसूरत पल गर्मियों की छुट्टियां होती थी बचपन में, जब हम लोग इकट्ठे होते थे तो वो मस्ती, वो खुशियां बहुत याद आती हैं।
1: वाह,
0: तो ऐसे ही हमारे दोस्त और हमारे साथ जुड़े रहें। उनका प्रश्न है परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल, तो हमें आप ईमेल भेजते रहें। हमारा ईमेल आईडी है
1: भाई, खुश रहना भी तो एक ईमेल है ना, खुश रहना भी तो एक हुनर है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों देखिए, हम ऐसी बातें तो करते रहेंगे, साथ ही आपके लिए बहुत सारी जानकारियां भी हमारे पास होती हैं। एक और जानकारी है, एक प्रेरणादायक कहानी है बल्कि, कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ों से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया अपने हुनर के बल पर।
1: अच्छा,
0: एक लड़की, एक लोक कला और उसे बचाने का सपना। ये कहानी है एपन गर्ल के नाम से मशहूर मीनाक्षी खाती की।
1: अरे वाह, तो भाई एपन गर्ल मीनाक्षी खाती की ये बात बता रहे हैं हम लोग। भाई 6 साल की उम्र से जब मीनाक्षी ने पहली बार एपन बनाया तो उनकी दादी ने उन्हें गले लगा लिया। भाई एपन हम बता दें आपको, ये पहाड़ में जब एक तरह की रंगोली होती है, इसे जो है वो चावल को भिगो दिया जाता है और पीस लिया जाता है और गेरू को भी भिगो कर तैयार कर लिया जाता है, उससे ये रंगोली बनती है, उसको ऐपण कहा जाता है। तो मीनाक्षी खाती ऐसा ऐपण बनाती है। तो फिर उनकी दादी ने उन्हें गले लगाकर कहा कि भाई एक दिन तू इस कला से बहुत नाम कमाएगी। और वही हुआ भी दोस्तों, ऐपण जो है ये हमने जैसे बताया कि बहुत पुरानी ये लोक कला है और शुभ मौक़ों पर दीवारों और ज़मीन पर बनाई जाती है। तो इसका जो डिज़ाइन होता है ना, वो संस्कृति और आस्था की कहानी कहती है दोस्तों।
0: बिल्कुल। और जब ये खूबसूरत कला लोगों के घरों से गायब होने लगी, नई पीढ़ी से दूर होने लगी, तभी मीनाक्षी ने ठाना कि भाई अपन को खत्म नहीं होने दूंगी। उन्होंने लोक कला को नए दौर से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने शुरू किया मीनाकृति द एपन प्रोजेक्ट, जहां एपन को कपड़ों, होम डेकोर, ज्वेलरी और आधुनिक डिजाइनों में उतारा गया और फिर से ये कला जीवित हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया।
1: हाँ, बहुत खूबसूरत एपन बनाती है मीनाक्षी जी, मैंने भी इनके बहुत सारे एपन देखे हैं कल्पना। और आज मीनाक्षी हजारों ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को एपन कला सिखा चुकी हैं,
0: सिखा भी रही है और साथ ही अपने काम में मगन मीनाक्षी ने कभी ये नहीं सोचा जो हुआ उनके जीवन में आया, वो पल जब उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकली बेटी को राष्ट्रपति भवन में अपनी कला को दिखाने का मौका मिला।
1: वाह, मीनाक्षी खाती ने ये साबित कर दिया कि अगर आप अपनी जड़ों को संभाल कर रखा जाए तो भाई गाँव की मिट्टी से निकली कला भी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है ना कल्पना।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे प्रेम पुजारी फिल्म से, जिसे गाया किशोर कुमार ने।
1: और कल्पना, परिवार के साथ बिताया गया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है, ये हमारा सवाल था। और जो सवाल का जो जवाब आया है, बड़ा एक दिल को छू लेने वाला ईमेल मुझे मिला है, आपको हो तो पढ़ दूं?
0: जी बिल्कुल।
1: नाम है मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा, और गांव शेरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से ये मेल हमें मिला है। वो याद कर रहे हैं अपनी माँ को और कह रहे हैं कि जब वो हैदराबाद से नौकरी

0: करने के बाद घर आकर पहली बार माँ के गले मिले तो उनकी आंख में आंसू आ गए और खुशी इतनी ज्यादा थी कि पूछो मत। लेकिन जब दूसरी बार वो माँ से मिले तो माँ बहुत बीमार थी और 5 दिन के बाद उनकी माँ नहीं रही। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी भावपूर्ण कविता भी लिखकर भेजी है और जिसमें वो लिखते हैं, माँ तेरी यादें तेरी बातें अब याद आ रही हैं, माँ तेरी बातें अब याद आ रही हैं। और कहते हैं कि खेल खेल में जब बच्चों से झगड़ा हो जाता था तो मेरी माँ पास आकर मुझे 2-4 थप्पड़ लगा जाती थी और प्यार भी करती थी। और गर्मियों की छुट्टियों में के बाद जब मैं रोज़ाना खेत में जाया करता था तो अपनी माँ के साथ बैठकर खेतों में काम करवाता था। रात में जब लैंप जलाकर स्कूल का काम पूरा करता था, माँ तेरी वो सारी बातें अब याद आ रही हैं। और कहते हैं कि 1 साल बाद वो नहीं रही और उनको गले में बीमारी हो गई थी और आज वो नहीं है। बट ये भी कहते हैं कि माँ बाप का प्यार किस्मत वालों को मिलता है, माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है। आप सब भी अपनी माँ से बहुत सारा प्यार करें, अपने बड़ों का सम्मान करें।
1: बिल्कुल, और देखिए यादों की यही तो खूबसूरती होती है कि यादें हमसे कभी जुदा नहीं होती। इंसान भले हमसे थोड़ा दूर हो जाते हैं लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमसे कभी जुदा नहीं होती। और एक और हमारे दोस्त हैं आशीष गिरी जी, वो लिखते हैं कि परिवार के साथ जब भी टाइम मिलता है खूब इंजॉय करता हूँ, खासकर अपने बेटे के साथ। गर्मी की पूरी छुट्टियाँ परिवार के साथ और अपने बच्चे के साथ बिताई हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास ईमेल आया है, उग्रसेन यादव जी लिखते हैं, आप दोनों को नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर आपकी अच्छी अच्छी बातें। कैसे आप दोनों समस्या बता रहे हैं और समाधान भी बता रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और प्रदीप खंडेलवाल जी भी लिखते हैं कि वैसे तो परिवार के साथ बिताया हर पल खूबसूरत होता है, पर इससे ज्यादा खूबसूरत पल जब हमारा पूरा परिवार हमारी नन्ही पोती के साथ खेलता है।
0: और एक और संदेश आया है, वो कह रही हैं कि सबसे खूबसूरत पल वो था जब मेरे पापा ने मुझ पर पूरा भरोसा कर मुझे पहली बार विदेश भेजा। उन्हें यकीन था कि मैं अकेले सब कुछ संभाल लूँगी और वो विश्वास आज भी मेरी सबसे अनमोल यादों में से एक है। आप हैं मंजू दिल्ली से।
1: बहुत अच्छा, हमारे श्रोता हमें ईमेल भेज रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अब जो हमारी बातचीत है ये दो तरफा हो गई है। तो बातें तो हमारी चलती रहेंगी लेकिन साथ ही साथ एक ज़रूरी जानकारी है आपके लिए और मैं उसको इस तरह से शुरू करना चाहूँगी, बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता।
0: आज तो तुम बहुत कविता के मूड में हो, है ना कल्पना?
1: कविताएं पसंद है और मुझे लगता है कि कविताओं के माध्यम से हम गागर में सागर भर सकते
0: जी,
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए तो बस ये कहना चाहती हूँ अपने दोस्तों से कि भाई बच्चे जब नए नए युवा होते हैं तो उनमें जोश ज़्यादा होता है और समझदारी कम होती है। ऐसे में कुछ बातें, कुछ सावधानियाँ उन्हें ज़रूर बतानी चाहिए जिसमें सबसे ज़रूरी है उनकी सुरक्षा जब वो ड्राइविंग कर रहे हैं।
0: भाई आजकल की जो जेंजी है वो तो बहुत समझदार है, वो जानती है भाई ड्राइविंग करें तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें। पर फिर भी हम एक बार ही बता देते हैं उन्हें कि ड्राइविंग सीखना आसान है लेकिन भाई गुस्सा ना करें, थोड़ा गुस्से को नियंत्रण पर रखें। भाई कोई ओवरटेक कर दे, गलत कट मार दे, गाड़ी में कोई नुकसान भी कर देना तो भी खड़े होकर कभी लड़ना मत, क्योंकि तुम नहीं जानते सामने कौन है, वो कैसा इंसान है। और तुम ये भी नहीं, तुम लेकिन तुम इतना जानते हो कि आपका घर में कोई इंतजार कर रहा है ना कल्पना?
1: बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो कहते हैं कि सड़क पर ईगो जीतने से कुछ नहीं मिलता, सबसे बड़ी जीत है अपने घर सुरक्षित लौटना। सड़क पर बहादुर वो नहीं जो लड़ाई कर दे बल्कि वो है जो माहौल बिगड़ने से पहले वहां से हट जाए।
0: हाँ, और जो है हमेशा जो लाइसेंस लें उसका पेपर दे, एक लर्निंग लाइसेंस दे और उसके बाद गाड़ी ड्राइव करना सीखें। लाइसेंस के बाद सभी नियमों का, ट्रैफिक कानूनों का पालन करें और सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें और बहुत अच्छे गाड़ीवान बने, है ना?
1: बिल्कुल सही बात है। और इससे होगा क्या कि भाई जब आप अच्छी तरह से नियमों का भी पालन करेंगे और साथ ही आप अपने व्यक्तित्व में ऐसा शांत भाव लेकर आएंगे तो आपका हर सफर जो है वो सुहाना होगा।
0: और ये भी जरूरी है कल्पना कि हम लोग एक अभिभावक की तरह जब सोचते हैं कि अपने बच्चों को 18 साल से पहले गाड़ी चलाने ना दें, जो कि कानून कहता है।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे सुहाना सफर फिल्म से, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने।
1: और अब हम एक कह देते हैं कि भाई हमारा जो भारत देश है उसमें खान पान जो है वो बहुत विविध है, उसके बारे में कुछ बात कर ले कल्पना।
0: बिल्कुल सही बात है, यहाँ के जो पारंपरिक व्यंजन होते हैं और मौसम के अनुरूप जो व्यंजन होते हैं उनके स्वाद की तारीफ सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बाहर के लोग भी करते हैं जो विदेशों से आते हैं। तो आज आपके लिए लाई हूँ रेसिपी कर्नाटक के कलबुर्गी क्षेत्र की एक पारंपरिक रोटी, कलबुर्गी रोटी की, जो ज्वार से बनी एक पौष्टिक देसी रोटी है जो स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। इसके लिए बहुत कम सामग्री की जरूरत होती है, ज्वार का आटा, गुनगुना पानी और नमक चाहिए।
1: मुझे लग रहा है भाई ज्वार के आटे में नमक और गुनगुना पानी मिला लो, नरम आटा गून लो और आटे की लोई को बनाकर हाथ से या बेलन से रोटी के आकार में फैला लो और गरम तवे पर दोनों तरफ से सेक लो और भाई हल्का सा घी लगाओ और बैंगन की सब्जी हो, मूंगफली की चटनी हो, दाल हो, दही हो, हरी मिर्च हो, प्याज हो, भाई तो फिर तो कहने ही क्या है ना कल्पना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वाद मुंह में पानी आ गया है और पानी आने के साथ स्वादिष्ट तो ये होती है लेकिन उसके साथ ही इसके बहुत सारे फायदे
1: होते भी होती है जी।
0: फाइबर से भरपूर होती है और पाचन में भी ये सहायक होती है, लंबे समय तक इससे पेट भी भरा रहता है और इसमें आयरन, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।
1: और भाई आहार देखो, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने भी कहा है मन की बात में कि कर्नाटक की पारंपरिक कलबुर्गी रोटी को उल्लेख करा है उन्होंने और कहा है कि भारत के स्थानीय और पौष्टिक जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा है। और ज्वार से बनने वाली ये रोटी ना केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि महिला सशक्तिकरण और स्थानीय रोजगार का भी सशक्त माध्यम बन रही है। तो इस रोटी को अपनी थाली में शामिल कीजिए क्योंकि ये एक रोटी बढ़ा रही है रोजगार।
1: भाई हमारा मन तो करता है बातें करते रहे लेकिन जाने का तो समय हो रहा है ना, भाई कल्पना भूल रही हो रोटी के बनाती रह गई
0: थोड़ा सा। तो चलिए ये गीत सुनवाते हैं और फिर श्रोताओं से विदा लेते हैं।

0: दोस्तों अभी आप ये गीत सुन रहे हैं आया सावन झूम के फिल्म से, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी ने। तो इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम के आज के अंक से मैं यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना
1: और रश्मि कुकरेती लेते हैं विदा और कहते हैं नमस्कार।

0: घर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नैफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान

0: की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट हॉबिट्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threats and challenges. Speaking at the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, Mr. Doval said that non-traditional threats have transcended national borders. He emphasized that innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism and cyber threats are getting increasingly digitized. He said the discussions during the 16th BRICS National Security Advisors meeting will focus on non-traditional security challenges.
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his martyrdom day. In a social media post, the Vice President described Dr. Mukherjee as a visionary leader, renowned educationist and staunch patriot. Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today said that the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED, is helping around 74 lakh farmers in the country. He said this while launching NAFED's auction portal nafix.in at Atal Akshay Urja Bhavan in New Delhi. Mr. Shah also paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his death anniversary. The Home Minister praised Dr. Shyama Prasad Mukherjee for being an advocate of nationalism, cultural nationalism and Indian culture. The Special Investigation Team, SIT, probing allegations of embezzlement of donations received by the Ram Temple in Ayodhya, has submitted its preliminary inquiry report to the Uttar Pradesh government.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:21 और 5 सेकंड्स। मैं आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अपने समय की सबसे अग्रणी और सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक, कपूर खानदान में जन्मी मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बारे में। जी हाँ, वही करिश्मा कपूर जिन्होंने ऐसा करिश्मा दिखाया जो कपूर खानदान में वर्षों से चली आ रही प्रथा को तोड़कर फिल्मों में काम करने वाली पहली महिला अदाकारा बनी। जी हाँ, इससे पहले कपूर खानदान में महिलाओं के फिल्मों में काम करने का रिवाज बिल्कुल भी नहीं था।

स्टेज शो करना, अलग अलग प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना और एक्टिंग करना बहुत पसंद था। लेकिन व्यावसायिक रूप से इन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इनकी मां बबीता ने इन्हें काफी सपोर्ट किया और फिल्मों में काम करने की अनुमति दे दी और फिर मिली बॉलीवुड को एक बेहतरीन अदाकारा।

करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई शहर में अभिनेता रणधीर कपूर के घर हुआ था। करिश्मा कपूर के दादा मशहूर अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक राज कपूर साहब थे और उनके परदादा अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। कपूर खानदान में पली बड़ी करिश्मा कपूर को अभिनय की कला विरासत में मिली और इसीलिए करिश्मा कपूर को बचपन से ही

करिश्मा कपूर ने सन 1991 में मात्र 16 वर्ष की आयु में रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम कैदी से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और इनके साथ इस फिल्म में थे अभिनेता हरीश कुमार। ये फिल्म तो एवरेज रही लेकिन इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री को बता दिया था कि अब करिश्मा कपूर दशकों तक बॉलीवुड पर राज करने वाली हैं।

इसके बाद सन 1992 में आई एक्शन ड्रामा फिल्म जिगर करिश्मा कपूर के फिल्मी करियर की पहली सफल और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इस फिल्म में उनके साथ नजर आए अभिनेता अजय देवगन। इन दोनों की जोड़ी ने आगे चलकर भी कई सफल और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आज के कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बारे में। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने सन 1992 से लेकर सन 2001 तक एक से बढ़कर एक फिल्में दी और उस समय के तकरीबन सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ अभिनय किया, जिसमें अभिनेता गोविंदा, सलमान खान, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सनी देओल, अक्षय कुमार और आमिर खान आदि शामिल हैं। गोविंदा और करिश्मा कपूर की जो

मिडियम वेव 97.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 23 तारीख दिन है मंगलवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे सोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री हेमांता स्वर्गिरी और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री अमल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री थुप्तन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक थाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री

0: शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं, और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि

जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए

0: मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान

0: से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे लामा गोम्बू डाकपा, लामा लोबसांग रूप और साथी भिक्षु गणों के आवाजों में बौद्ध भक्ति भजन। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम वंदना।

Yeah.

Thank you.

Thank you.

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे लामा गोम्बो डाकबा और लामा लोपसांग रूप की आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन। इसके साथ ही दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। आइए अब आनंद लेते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे दीपेन बरुआ के आवाज में चंद आसामिया फिल्मी नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत दीपेन बरुआ के आवाज में चंद आसामिया फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम।

0: स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व विषय पर एक वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ कुमारी ड्रेमा छोईकी, पीएम श्री जैनवी तवांग में नौवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्ता का विषय है स्वस्थ और स्वच्छता बनाए रखने का महत्व। शरीर का हाल मन का आईना है, इसे साफ रखना भी एक कला है। स्वस्थ मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वस्थ शरीर के बिना जीवन का आनंद लेना संभव नहीं है। स्वस्थ को बनाए रखने में स्वच्छता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। स्वच्छता का अर्थ है घर, शरीर, समाज और पर्यावरण को साफ रखना। स्वस्थ और स्वच्छता का आपस में गहरा संबंध है। स्वच्छता का पालन करने से अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। गंदगी के कारण बैक्टीरिया, मलेरिया, डेंगू और हैजा जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। नियमित स्नान करना, हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना और स्वच्छ जल पीना भी स्वच्छता की अच्छी आदतें हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। स्वच्छ वातावरण समाज के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यदि घर, स्कूल, सड़कें और सार्वजनिक स्थान साफ हो तो बीमारियों का फैलाव भी कम होता है। खुले में कचरा फेंकना और खुले में शौच करना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। यह कहा जा सकता है कि स्वस्थ और स्वच्छता जीवन का आधारशिला है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो न केवल वह स्वस्थ रहेंगे बल्कि देश और समाज भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें स्वच्छ रहने का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, यह तब ही संभव हो सकता है जब हम स्वच्छ रहेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
0: श्रोताओ, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के नौवीं कक्षा की छात्रिका कुमारी ड्रेमा छोईकी से स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के विषय पर एक वार्ता।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
2: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है दिल्ली सिक्स फिल्म से मोहित चौहान के आवाज में, बोल प्रसून जोशी के और संगीत ए आर रहमान का।

दीपेन बरुआ की इन्हीं आसामिया फिल्मी नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 9वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी ड्रामा चुकी से

अगला नगमा सुनिए मोहित चौहान, श्रेया घोषाल और न्यूमन की आवाजों में। आरक्षण फिल्म की इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत से सवारा है शंकर एजान लॉय ने।

श्रोता, नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है पार्टनर फिल्म से सोनू निगम, कुणाल कांजावाला और सुजैन डी मेलो की आवाजों में। साजिद वाजिद द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है शब्बीर अहमद ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है बैंग बैंग फिल्म से हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजों में। अन्विता दत्त के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

0: थी।
1: अगला नगमा सुनिए कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजों में। जुग जुग जियो फिल्म के इस गीत को लिखा है ट्रेडिशनल ने और संगीत से सवारा है कनिष्क सेठ ने।

अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे बोल भुलैया 2 फिल्म का नगमा, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का। कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है बूथ 1 फिल्म से अखिल सचदेव और मनशील गुजरल की आवाजों में, बोल एवं संगीत अखिल सचदेव का।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए, ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शिफाली आलवरेस की आवाजों में, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत प्रीतम का।

अलावा सुनिए यासर देसाई और अल्तमाश फरीदी की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म के इस गीत को लिखा है रेशमी विराग ने और संगीत दिया है तनिष्क बख्शी ने।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म का नगमा, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अमित त्रिवेदी का। श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए लाल सिंह चड्ढा फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में। प्रीतम द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है अभिजीत भट्टाचार्य ने।

लाल सिंह चड्ढा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं अब सुनिए शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन। राग है यमन।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे यमन राग पर उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नाहरलगन स्थित ट्रिम्स में राज्य टेली रेडियोलॉजी हब, रेडियोलॉजी इन्फॉर्मेशन सिस्टम तथा पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन पुलिस द्वारा 34.33 करोड़ रुपए की कथित निवेश धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का

0: ना पूरा हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप में इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। आज के मुकाबले में रात 10:30 बजे से पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान आमने सामने होंगे और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग की शुरुआत मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 65 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाश।
0: अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व्यूराम बाहगे द्वारा नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स में राज्य टेली रेडियोलॉजी हब, रेडियोलॉजी इन्फॉर्मेशन सिस्टम RIS तथा पिक्सर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम PACS का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत लागू की गई इस पहल का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के अस्पतालों को और स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष रेडियोलॉजिस्ट से जोड़ते हुए राज्यव्यापी डिजिटल रेडियोलॉजी नेटवर्क स्थापित करना है। नई व्यवस्था के तहत दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में तैयार किए गए एक्सरे, सिटी स्कैन तथा अन्य रेडियोलॉजिकल चित्रों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन विशेषज्ञों के पास व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए भेजे जाते रहेंगे और इससे रोगों के निदान में होने वाली देरी को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। नाहरलगन पुलिस द्वारा 34.33 करोड़ रुपए के कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में फर्जी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल, सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण तथा उच्च स्तर के राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट संपर्कों के झूठे दावे किए गए थे। आरोपी की पहचान असम के गुवाहाटी निवासी 41 वर्षीय ऋषिराज बोरकोतकी के रूप में की गई है, जिसे गत 20 जून को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 मोबाइल फोन और लगभग 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का एक लग्जरी वाहन भी जब्त किया है। नाहरलगन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीलम नेगा ने कहा है कि राजेश अग्रवाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बंदरदेवा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार स्वीकृतियों या सरकारी संरक्षण के जुड़े किसी भी दावे के संबंधित अधिकारियों से पुष्टि आवश्यक कर ले और केवल सोशल मीडिया या डिजिटल संचार पर भरोसा न करे। उन्होंने लोगों से संदिग्ध निवेश प्रस्तावों या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाने में दर्ज करने की भी अपील की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन अगीर और भारत के अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा है कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच गौर ने कहा है कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक निर्णायक रूप से आगे बढ़ रही है, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनता

0: संघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा है कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान भी किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा है कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्था बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स .in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा।
1: अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया है कि 60 दिनों के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रही जॉर्डन को 2-1 से मात दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एक महत्वपूर्ण मुकाबले ने अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। आज के मुकाबले में रात 10:30 बजे से पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान आमने सामने होंगे। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों तवांग, कुरुंग, कुमे, अपर सुबनसिरी, शियोमी और सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan in this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. This year, the government has announced a total of 130.

Я тебе мозг очищаю, как тебе ты здесь, я по сумму жить.

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन देरिम में सुनिए खिनमे निंगमा मठ के उमजे ngawang tinle और भिक्षुगणों के आवाजों में बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के 4th की छात्रिका कुमारी केजर सुमू कार्लो से एक अंग्रेजी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आनंद दीजिए आशिकी फिल्म के चंद नगमे आज शाम 7:11 पर। आज शाम 7:25 पर सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक

चार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए 10 फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 24 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद हिंदी भक्ति गीत कल दोपहर 2:30 पर। चंद आसामिया फिल्मी नगमों का आनंद लीजिए भूपेन हजारिका के आवाज में कल दोपहर 3 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 9वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी सोनम सोमू से रसोई बागवानी के लाभ विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन, राबता फिल्म से अतीफ असलम, गुडबाय फिल्म से अमित त्रिवेदी, ऊंचाई फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव और रॉय फिल्म से कनिका कपूर और मीत ब्रदर्स के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:33 पर। दोपहर 3:50 पर सुनिए फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत राधे श्याम फिल्म से अरमान मलिक, क्रूक फिल्म से निखिल डिसूजा, शिवाय फिल्म से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से गोपी सुंदर और चिन्मय श्रीपदा, रावण फिल्म से एकोन विशाल ददलानी और श्रुति पाठक, पाठशाला फिल्म से लकी अली, बाग मिल्का बाग फिल्म से जावेद बाशिर, बॉडीगार्ड फिल्म से एश किंग और क्लिंटन सेरियो, कॉकटेल फिल्म से नीरज श्रीधर और कविता सेठ और वेकअप सिट फिल्म से कविता सेठ की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए उस्ताद अली अकबर खान से सरोद वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजानी की तरह मुनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए महामहिम टुलकू तेंजिन गिरमे रिम्पोछे जी से आचार्य शांति देवा द्वारा रचित बोधिसत्व के जीवन मार्ग पर आधारित शिक्षा के श्रृंखला का शेष भाग कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में। कल शाम 5:35 पर सुनिए साप्ताहिक मुनपा कार्यक्रम नांगछे कलोप लेरिम सेडा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदुन लेरिम कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर सुनिए हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए लक्ष्य फिल्म का एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब

Thank you.

Tschüss.

Thank you.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून

0: भी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी करियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
2: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरि और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज़्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anucha Kumar. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Journalist P. Narayanan was awarded the Padma Vibhushan in the category of Literature and Education, and former judge K.T. Thomas was given the Padma Vibhushan in Social Work. Former tennis player Vijay Amritraj, actor Mammootty and playback singer Alka Yagnik received the Padma Bhushan Award. This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The Ministry of External Affairs today informed that 10 Indian-flagged vessels are still in the Persian Gulf region. Addressing media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Nandeep Jaiswal said that since the signing of MOU between the US and Iran on the 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz.
2: Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 2,85,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. And it is our expectation and hope that the remaining Indian-flagged vessels would also be able to cross the Hormuz soon.
3: Responding to the comments made by Pakistani Defence Minister Khwaja Asif on the situation in Pakistan-occupied Kashmir, Mr. Jaiswal said such remarks are disparate attempts by the neighbouring country to cover up its own failings. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh

आनंद लेंगे आशिकी फिल्म के चंद नगमे। तो चलिए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पोतवाल के आवाजों में, बोल रानी मलिक के और संगीत नदीम श्रवण का।

अगला नगमा पेश है कुमार सानू के आवाज में। आशिकी फिल्म के इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

0: आशिकी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे समीर का लिखा नगमा, स्वर कुमार सानू और अनुराधा पोतवाल के तथा संगीतकार नदीम श्रवण। इसके साथ ही फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:25 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक में आज आप सुनेंगे सहायक आयुक्त कीर्तितल श्री सांगे नोरबू द्वारा एकल आयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचकर पर्यावरण संरक्षण कैसे करें विषय पर दिए भाषण के अंश। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक।
1: सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू आवर प्रिंसिपल मैडम एंड डीडीएसएस for giving me this opportunity to be in front of you, just to share small thoughts which always keeps on pricking me day in and day out. And it's a very pressing issue for all of us that we need to discuss and need to think on it and need to take action. Basically, I want to share my views and concern with you regarding the environment. And just a few days back, on 5th of this month, we celebrated World Environment Day. उसी का सिलसिले में लेके और तवांग का कंटेक्स्ट में लेके थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। अभी देखिए, हमारा तवांग इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड मोस्टली द टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड फ्रॉम अब्रॉड आल्सो दे हैव स्टार्टेड कमिंग हियर एंड ओवर द इयर्स वी हैव सीन क्वांटम जंप बहुत बढ़ गया। एवरी ईयर टूरिस्ट का जो यहाँ फ्लो में बढ़ रहा है एंड तवांग काफी सुंदर है एंड वी हैव वेरी लाइक सेक्रेट मॉनेस्ट्री विच इज कंसिडर्ड एज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री। And Tawang as such, it's a very beautiful place. We have mountains, valleys and lush green forests even. Unlike other places, yahan par sab kuch hai, yahan ka jal, vayu, sab kuch shuddh hai, saaf hai. And above all,

यहाँ का आदमी भी बहुत अच्छा है. दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी काइंड. बट उसी के साथ में अभी हम देख रहे हैं हमारा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है डे बाई डे इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, मतलब खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, खराब हो रहा है. एंड उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक. अभी प्लास्टिक को देखा जाए तो रैम्पेंट, इनडिस्क्रिमिनेट, फ्लैग्रेंट, ब्लैटेंट, जो भी टर्म यूज करो, वी थ्रो इट, वी लिटर एवरीवेयर. ओनली हम कंसर्न है अपना घर का आंगन को. ऑलवेज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हाउस एंड ओन प्रेमिसेस एंड हमारा बाकी जो सराउंडिंग्स को केयर करें. बट वी डोंट बॉदर, जैसे हम अपना घर से लेके किसी खुला मैदान में छोड़ देगा, कहीं पानी में फेंक देगा, कहीं रिवर स्ट्रीम में फेंक देगा, कहीं लेक्स में फेंक देगा, कहीं पहाड़ में लेके छोड़ दिया, वी हैव लीस्ट बॉदर. तो इसको देखते हुए काफी हमारा जो अभी का जो डीसी मैडम है नामगेल वामो, शी हैज दैट कंसर्न फॉर आवर तवांग डिस्ट्रिक्ट एंड शी स्टार्टेड ए काइंड ऑफ मूवमेंट लाइक. तो लास्ट ईयर हम लोग ने पूरा डिस्कस करके विद ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड स्पेशली आई लाइक टू थैंक आवर WWA, Women Welfare Association.

कहीं बाहर में लेके छोड़ दिया, वी हैव लीस्ट बॉर्डर। तो इसको देखते हुए काफी हमारा जो अभी का जो डीसी मैडम है नामगेल वांगमो, शी हैज दैट कंसर्न फॉर आवर तवांग डिस्ट्रिक्ट एंड शी स्टार्टेड ए काइंड ऑफ मूवमेंट लाइक। तो लास्ट ईयर हम लोग ने पूरा डिस्कस करके विद ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक आवर WWA वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ तवांग, उनका जो सहयोग के साथ में हम लोग ने एक बाजार में हर जगह में रेड किया था और अपील किया था कि दुकानदार को आपका कैरी बैग सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथिन को नहीं देना है। तो कुछ दिन तक चला है एंड देन अलोंग विद दैट हम लोग ने प्रोग्राम में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा था सेंसिटाइजेशन के लिए प्लास्टिक का क्या हानिकारक है, उसका हाजर्डस और हार्मफुल, और आगे डाउन द लाइन जाके हमारे लिए हमारा जो मैराइन लाइफ है, हमारा बाकी जो स्पीसीज है फ्लोरा एंड फौना, हाउ इट कैन इम्पैक्ट ऑन दोस लाइक लिविंग बींग्स, जो हमारा एक पार्ट है, हमारा इकोसिस्टम, हमारा इकोलॉजी, हमारे इन्वायरमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, उनके बिना हम नहीं जी सकते, तो उसको कैसे इम्पैक्ट करता है। एंड सब्सिक्वेंटली ऑर्डर्स भी निकला था फॉर आई गेस 24 जून 2025 में स्ट्रिक्टली तवांग में सिंगल यूज प्लास्टिक का कैरी बैग का यूज करना बंद के लिए एक ऑर्डर भी निकाला था। तो कुछ महीना तक चला है एंड वी ऑल्सो बींग इन द एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को करना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ बाकी काम के चलते हम लोग एक्चुअली रेगुलरली वी कुडंट कंडक्ट रेड और चेकिंग। तो बाद में देखा काफी बढ़ गया, जहां तक कचरा है फेंक दिया, उधर फेंक दिया, नोबडी टेक्स केयर। लेकिन आप देखिए आपका हमारा यहाँ पे जहां पर हम लाइफ थ्राइव करता है, लाइफ फ्लोरिश करता है, कौन सा प्लेनेट है? सिर्फ अर्थ है ना। डू यू एग्री और नॉट? मार्स में और जुपिटर में और सैटर्न में लाइफ फ्लोरिश करता है क्या? नहीं करता ना। लाइफ थ्राइव करता है क्या? नहीं करता ना। मदर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ फ्लोरिशेस, वेयर वी सस्टेन, वेयर वी एग्जिस्ट एंड वेयर वी विल थ्राइव इन डेज टू कम। लेकिन अगर हम इसी प्लेनेट अर्थ को अगर हम एवरीडे हम इसको हार्म करते रहेगा और इसको डिग्रेड करते रहेगा, आपको क्या लगता है कि ये आगे जाके हमको सस्टेन कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। जैसा भी आपका एक माँ है, अगर माँ को आप जितना तकलीफ जगा देगा, अल्टीमेटली आपका माँ एक दिन आपको सरेंडर कर देगा, बोलेगा नहीं अभी बस बेटा, बस अभी हो गया, बस बेटी, बस अभी मैं थक चुका हूं। अगर ये हमारा प्लेनेट अर्थ, हमारा इन्वायरमेंट, इफ शी हैड ए वॉइस टू से, देन शी कुड हैव सेड कि बस बेटा बस माफ कर दो, अभी नहीं सके और हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके। तो सेम थिंग इफ यू जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस, टाइम हैज कम टू थिंक ओवर इट, अगर अभी नहीं तो बाद में कभी नहीं। अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा इश्यूज है एंड आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्कस ऑन दिस ऑल्सो, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया है, हर चीज आदमी के पास अवेलेबल है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल आजकल फिंगर टिप्स में, आपका गूगल हो चाहे जेमिनी हो चाहे ChatGPT हो चाहे क्लाउड हो, किसी भी पूछो आप, जो भी पूछो, एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप, आई मीन इन योर स्मार्टफोन। एंड एवरीबडी इज वेरी इंटेलिजेंट नाउडेज, कोई भी बुद्धू नहीं, कोई भी अनजान नहीं, कोई भी इनोसेंस नहीं, सब सेंसिबल है। लेकिन इसी सेंसिबल का दौर में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी हैव बिकम इनसेन, इनसेन हो चुका है हम लोग, सेनिटी खत्म हो गया, इनसेन हो गया। तो मैं एक्चुअली यहां पर आप लोगों को बीच में क्यों बोलना चाहता है, क्योंकि आप लोग हमारा फ्यूचर है, हमारा वी कॉल यू आर्किटेक्ट, हमारा फ्यूचर है। बोलता ना नेशन बिल्डर, नेशन बिल्डर, सिर्फ हम बोलते रहते हैं, लेकिन आगे जाके जस्ट लाइक हमारा इडी साहब ने यहाँ पर बताया कि आप आगे जाके यहाँ पर खड़ा होगा आज दिन, हमारे एसपी साहब ने इतना अच्छा से ड्राफ्ट को लेके ये बताया। तो ड्राफ्ट के साथ में हमारा एनवायरनमेंट को बचाना और प्लास्टिक का यूज को कम करना, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और हमारे लिए कंसर्न है एंड वी नीड टू एक्ट ऑन इट प्रोएक्टिवली। अगर अभी से अगर नहीं करेगा, आपने सुना होगा प्लास्टिक वगैरह के आगे जाके नदी में जाता है, नदी कंटामिनेट, आगे जाके मैराइन लाइफ, जो मैराइन जो एक्वेटिक एनिमल्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फीड करते हैं, जो हम लोग खाते हैं आगे जाके मच्छी वगैरह, उसमें वो केमिकल प्लास्टिक का माइक्रोन लेवल में आ जाता है और हमारा पेट में जाके हमको तरह तरह का बीमार हो सकता है। सेकेंडली अगर आप ऊपर जाएगा, पहाड़ों में जाएगा, बोतल को लेकर प्लास्टिक को इनडिस्क्रिमिनेट फेंकेगा, वो जाके पानी में जाके पानी कंटामिनेट हो, फिर हम जाके तरह तरह, हम सोचते हैं कि प्लास्टिक को फेंक देगा वो मेरा काम खत्म, लेकिन आगे जाके वो जाके हमारा पूरा सोइल में जाएगा, सोइल इरोजन से लेके सोइल का फर्टिलिटी को पूरा खत्म करके लास्ट में जाके आपका जो प्रोडक्टिविटी को खत्म करेगा। तो प्रोडक्टिविटी खत्म होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या होगा, हमारा स्केसिटी होगा, फूड स्केसिटी होगा, फैमिन वगैरह हो सकता है। तो उसका अगर रेमिफिकेशन को अगर देखा जाए तो बहुत वाइड है। तो इसको देखते हुए हम सोचते हैं कि आप जाके एक प्लास्टिक के अगेंस्ट में
जो

प्लास्टिक है उसके अगेंस्ट देगा, एम्बेसडर बन सकते हैं। अगर अभी हम लोग का समय तो वी फेल गए, हम लोग ने फेल हो चुका है। एक्चुअली जो गंदगी दिखाई दे रहा है आप लोगों ने नहीं बनाया, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ने बनाया। हम जब छोटा था मेरा हम लोग का माँ पिता वेरी हार्डली वी कुड सी यूजिंग कैरी बैग्स, उस वक्त अलग थैला हुआ करता था उसमें ले जाता है, ये हमारा जो ठोंगा जो कागज का हुआ करता है। लेकिन हमारा जो पूर्वजों ने हमारा मैं पेरेंट्स ने शायद इंग्लैंड को इतना डैमेज नहीं किया जितना हम लोग ने डैमेज किया, हम लोग ने डैमेज किया। तो उनका समय में प्लास्टिक यूज नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का समय क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत कंफर्ट चाहते हैं, हम चाहता नहीं कि भुगना चाहता नहीं, हम बैग लेना नहीं चाहते, दुकान में जाके सिंपली डिमांड करते कैरी बैग दे दो। अरे आप घर से थैला लेके जाओ ना, हो जाएगा ना, उसमें थैला में आ जाएगा। तो एक इंडिविजुअल लेवल अगर आप सब में से अगर प्रण ले लेगा, अगर ये प्लेस ले लेगा कि एक एक बच्चे अपना घर में जाके माँ पिता जी बताएगा कि नहीं करना है, ये जाके आगे हमारा फ्यूचर के लिए खराब है, हमारा पूरा एनवायरमेंट को खत्म करेगा, हमारे जेनरेशन को ये हार्म करेगा, आने वाला कई पीढ़ी को इम्पैक्ट करेगा। अगर ये चीज अगर आप मन में ठान लेगा, अगर आप कन्विक्शन से इसको लेके मैसेज को लेके अगर माँ पिता जी को बताएगा, इफ यू डिस्कस इवन विद देम आल्सो और आगे जाके एक्सप्लोर करें क्या हो सकता है, इवन यू कैन गूगल क्या हो सकता है प्लास्टिक से क्या हानि कर, तो आप लोग सब पता चल जाएगा। तो ये अगर मैसेज को लेके अगर घर घर में अगर आप एक एम्बेसडर के रूप में एम्बेसडर ऑफ क्रूसेड अगेंस्ट यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग, अगर आप एक ही बच्चे आज यहाँ से एक एम्बेसडर बनके निकल के आएगा, तो मैं समझता हूँ कि पूरा मुझे बिलीव एंड आई एम होप आई एम टोटली अपबीट एंड आई एम सैंग्विन दैट ए डे विल कम दैट टाउन विल बी फ्री फ्रॉम प्लास्टिक। लेकिन ये सब आपको प्रण लेना पड़ेगा, हम अकेला से नहीं होगा, हमारा एडी साहब अकेला से हमारा एसपी साहब से नहीं होगा, हम सब मिलकर सिर्फ अर्बन वाला करेगा, अर्बन डिपार्टमेंट करेगा अर्बन का काम। और हम लोग सीनियर्स लोग भी, हम लोग यहाँ पर जितना भी मैडम्स है टीचर्स है ऑफिसर्स है, हम सबका भी दायित्व बनता है। हमने बहुत कम देखा है कि हमारा ऑफिसर हमारा हम लोग मैं खुद भी हूँ हमारा जो एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी है हम भी कितना केयर करते हैं कितना इनिशिएटिव ले गए बहुत कम। लेकिन अगर अगर हम अभी नहीं लेगा तो ए डे विल कम जब ये बच्चे लोग बड़ा होके जब हम लोग एज होगा बोलेगा दे वेयर द वंस हु स्पॉइल्ड हु डैमेज आवर ओनली प्लेनेट होम वेयर लाइफ कुड थ्राइव, अभी लाइफ नहीं है, एक्सटिंक्शन में आ गया, एक्सटिंक्शन क्राइसिस में आ गया। तो ये जो बोलने का मौका हम लोग को नहीं देना है, हमारा जो जितना भी यहाँ पर जो टीचर्स है मैडम्स है सर्स है ऑफिसर इवन मी, तो ये मौका जो आप लोग बच्चा लोग आप लोग मौका देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए फ्रॉम डे वन राइट फ्रॉम नाउ अगर आप ये मैसेज को लेके सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग नहीं देना है। अभी दुकान वाला क्या बोलता है, दुकान वाला ये बोलता है कि डिमांड करता है। तो मैं आप सबसे जितना भी आप स्टूडेंट्स है आज से आप लोग प्लास्टिक कैरी बैग डिमांड करेगा नहीं करेगा ना? Do you want to keep our town clean and safe? Yes or no? Okay, तो आज आप अपने सपने यहाँ एक टर्न लिया, देखो आज से आप कैरी बैग डिमांड नहीं करेगा, पॉलीथिन बैग डिमांड नहीं करेगा, और कम से कम कोशिश कीजिए कि हम भी प्लास्टिक को कम से कम यूज करेगा। आप दुकान में जाते हैं रैपर्स में आते हैं अंकल जिप्स आते हैं ये आते हैं वो आते हैं कितना इसका आपको हेल्थ में डैमेज करते हैं वो आपको मालूम होगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सकेगा जंक फूड को मत खाइए, प्लास्टिक का पैक जितना हो सके फ्रेश फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, प्लास्टिक में जितना भी है कवर पैकिंग आता है उसको कम से कम यूज कीजिए। जितना अगर हम कम यूज करेगा उतने ही हमारा सराउंड में प्लास्टिक कम आएगा, उतने ही हमारा मदर अर्थ को हम सेफ गार्ड कर सकते हैं। अगर हम अभी से ये नहीं करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग यहाँ पर रहने नहीं सकेगा एंड इट विल बी टू हॉट, गंदगी होगा, टू मच पॉल्यूटेड होगा और अनसेफ होगा रहने के लिए। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जेनरेशन आप जैसे बच्चे लोग जो आगे इतना एक प्रोमिसिंग इतना आगे जाके बहुत कुछ करने वाला आपके देश के लिए अपना सोसाइटी के लिए, तो आपका जो फ्यूचर आपका जो एनवायरमेंट जो आपके लिए है उसको हम डैमेज नहीं करना चाहते। तो मैं वंस अगेन आप सभी बच्चों से आप लोग यहाँ से एम्बेसडर बन के जाइए और माँ पिता जी के साथ बताइए कि आप भी दुकान में जाके बिल्कुल कैरी बैग डिमांड नहीं करना है। ये तवांग को साफ रखना सेफ रखना हम सब का कर्तव्य है। अगर तवांग का हम साफ नहीं रखेगा सेफ नहीं रखेगा तो एक दिन मदर अर्थ भी गुस्सा होकर उसका रात उसका कहर हमारे ऊपर बरसेगा और हम लोगों पर बहुत भारी पड़ेगा। अभी आपको इतना रियलाइज नहीं करेगा बट इन डाउन द लाइन आफ्टर 10 इयर्स जब आप लोग हम लोग का जगह में होगा 10 इयर्स को, तो उस समय एक बात छेड़ा था उन्होंने, हमने नहीं छेड़ा सबने छेड़ा है लेकिन कान में किसी ने

0: बिहार में नहीं लिया। तो ये बात छेड़ा था, आज हम लोग के लिए कितना हकीकत साबित हो रहा है आपको रियलाइज होगा। तो बेटर लेट देन नेवर बोलता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, अभी से शुरू करना है, लेट नहीं रखना है। अगर अभी से नीपिंग एट द बट नहीं करेगा तो हमारे लिए समय बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो मैसेज को लेके बोलते ना, प्रोवोक थॉट्स इंस्पायर एक्शन बोलते हैं, तो मैंने आपके दिल में एक थॉट पैदा कर दिया, अभी वो एक्शन को आपको करना है। With these few words, once again, I thank you for all of you and for giving me this time to share my views and concerns, especially of Tawang और आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले future के लिए। Thank you very much.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे सहायक आयुक्त कितफेल श्री संगे नुरबू द्वारा एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचकर पर्यावरण संरक्षण कैसे करें विषय पर दिए भाषण के अंश। इसके साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग अब समाप्त होता है। श्रोताओं, इस बीच आनंद लीजिए आया सावन जूम की फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया गीत, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो तीन श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायण को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किए गए। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव पर जोर देते हुए अधिकारियों से प्रशासन और शासन के केंद्र में नागरिकों को रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने युवा सिविल सेवकों से विकसित भारत 2047 की यात्रा में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने उनसे राष्ट्र निर्माण के लिए उद्देश्य की स्पष्ट भावना, नवाचार और नागरिक केंद्रित सुशासन के साथ समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष प्रमोद जैन ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी पन्नायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने राज्य में सुशासन को मजबूत करने और जन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रशासनिक सुधार आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों पर सरकारी कार्यप्रणाली में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ सार्थक सिविल सेवा सुधारों के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित होनी चाहिए। राज्यपाल ने उत्कृष्टता, पेशेवर दक्षता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए योग्यता आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की भी वकालत की। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वीराम बाघे द्वारा नाहरलगन स्थित तोमोरेब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स में राज्य टेली रेडियोलॉजी हब, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम RIS तथा पिक्चर आर्काइविंग एवं कम्युनिकेशन सिस्टम PAC का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत लागू की गई इस पहल का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट से जुड़ते हुए राज्यव्यापी डिजिटल रेडियोलॉजी नेटवर्क स्थापित करना है।

0: नई स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में तैयार किए गए एक्सरे, सिटी स्कैन तथा अन्य रेडियोलॉजिकल चित्रों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन विशेषज्ञों के पास व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए भेजते हुए रोगों के निदान में होने वाली देरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। नाहरलगुन पुलिस द्वारा 34.33 करोड़ रुपए के कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में फर्जी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल, सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण तथा उच्च स्तर के राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट संपर्कों के झूठे दावे किए गए थे। आरोपी की पहचान असम के गुवाहाटी के निवासी 41 वर्षीय ऋषिराज बोर काकोतोई के रूप में की गई है, जिसे गत 20 जून को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 मोबाइल फोन और लगभग 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का एक लग्जरी वाहन भी जब्त किया है। नाहरलगुन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीलाम नेगा ने कहा है कि राजेश अग्रवाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बंदरदेवा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा गया है कि सरकारी स्वीकृतियों या सरकारी संरक्षण से जुड़ी किसी भी दावे के संबंधित अधिकारियों से पुष्टि अवश्य करें और केवल सोशल मीडिया का डिजिटल संचार पर भरोसा न करें। उन्होंने लोगों से संदिग्ध निवेश प्रस्तावों या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाने में देने का भी आग्रह किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों तवांग, कुरुंकुमे, अपर सुबनसिरी, शियोमी और सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति की दूसरी बैठक आज तवांग उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त नामग्याल आंगमो की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही विकास परियोजनाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की व्यापक समीक्षा की करते हुए जनहित में इसे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Indu Chuku. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second Civil Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Journalist P. Narayanan was awarded the Padma Vibhushan in the category of Literature and Education, and former Judge K.T. Thomas was given the Padma Vibhushan in Social Work. Former tennis player Vijay Amrit Raj, actor Mammootty and playback singer Alka Yagnik received the Padma Bhushan Award. This year the government had announced a total of 131 Padma Awards. Prime Minister Narendra Modi has stressed Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the center of governance. Interacting with 183 officer trainees of the IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. Chairman of the Arunachal Pradesh Administrative Reforms Commission, Pramod Jain, called on the Governor Lieutenant General K.T. Parnayak at Lok Bhavan in Itanagar today. During the meeting, the Governor underscored the vital role of the Administrative Reforms Commission in strengthening governance and enhancing public service delivery in the state. He emphasized that the Commission's recommendations should focus on promoting greater accountability, ensuring transparency in government functioning, and improving administrative efficiency through meaningful civil service reforms. The governor also advocated the adoption of merit-based performance evaluation systems to encourage excellence, professionalism and integrity in public service. Health Minister Bhimrao Vaghe on Monday inaugurated the state tele-radio hub along with a radiology information system and picture archiving and communication system at Tomoriva Institute of Health and Medical Sciences,

शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर और साथियों के इस देशभक्ति नगमे के साथ ही कार्यक्रम कौमी तराने अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है मेहर नगर उमर खेत महाराष्ट्र से अभिजीत गवनकर राही, श्रीमती सरिता गवनकर, परिणीता सिद्धार्थ गवनकर और अर्जुन गवनकर, आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवनकर, सूत गवनकर, ध्वनि गवनकर और प्रिंस इकांश गवनकर ने। आप सभी के फरमाइश पे पेश हैं साया फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया गीत, बोल सईद कादरी के तथा संगीतकार अनु मलिक।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत से तीसरी कसम फिल्म का नगमा। इस नगमे को लिखा है शैलेंद्र ने, गाया मुकेश ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। तोरोवल नवनशहर पंजाब से गंगादीप ठंडी, तृप्ता कुमारी ठंडी, डॉक्टर प्रियंका ठंडी, डॉक्टर प्रशांत ठंडी, डॉक्टर प्रियम ठंडी, बेबी वमिका और वाणी ठंडी के फरमाइश पे सुनिए अनारी फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

अगला नगमा सुनिए नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवकर, निर्मला नवकर और विशाल नवकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपन तायडे और आशीष मुरेकर के फरमाइश पे आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गायक नगमा, बोल आनंद बख्शी के और संगीत एसडी बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंडा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। आपकी फरमाइश पर प्रस्तुत है सच्चा झूठा फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया गीत। कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है इंदिवार ने।

श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे पास है हर मैच का ताजा अपडेट और वो सब कुछ अधिक जानकारी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अंक, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से और इंग्लैंड का मुकाबला घाना से होगा। अर्जेंटीना, फ्रांस और नॉर्वे नॉकआउट राउंड में पहुंचे। जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज दो रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किए। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। भारत ने तीसरा क्वार्टर समाप्त होने तक 3-1 की बढ़त बनाई। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित।

0: तो कार्यक्रम को सबसे पहले शुरू किया जाए फुटबॉल के महासंग्राम से यानी फीफा विश्व कप की खबरों से, जहां आज ग्रुप स्टेज में कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं जिसमें टीमें नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पे उतरेंगी। ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका के ह्यूस्टन में उज्बेकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं ग्रुप एल में 1:30 बजे अमेरिका के बोस्टन में इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। कनाडा के टोरंटो में सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से, जबकि ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया और कांगो आमने सामने होंगे। इस बीच अर्जेंटीना, फ्रांस और नॉर्वे ने नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: Could drop anywhere, and it's turned in from close range. It's a second goal for Algeria, and it's been scored by Amin Gouiri. Algeria coming from behind in the second half. Jordan 1, Algeria 2.
2: अल्जीरिया ने आज सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में ग्रुप जे के मैच में जॉर्डन को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के नॉकआउट राउंड में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। मैच में पहला गोल जॉर्डन के निजार अल राशदान ने मैच के 36वें मिनट में किया। इसके बाद अल्जीरिया ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए पलटवार किया और 2 गोल करते हुए मैच अपने पक्ष में कर लिया। इस हार के साथ ही जॉर्डन विश्व कप से बाहर हो गया है।
3: Senegal bite back in stoppage time. The final whistle and the Viking adventure will go on. Norway into the knockouts.
2: इससे पहले 28 साल बाद फीफा विश्व कप खेल रही नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। नॉर्वे के लिए एरलिंग हॉलैंड एक बार फिर से मैच के हीरो बनकर उभरे। मैच का पहला गोल पहले हाफ के 43वें मिनट में नॉर्वे के मार्कस होल्मग्रेन पेटरसन ने किया। इसके बाद दूसरे हाफ में 48वें मिनट में एरलिंग हॉलैंड ने गोल कर नॉर्वे को 2-0 से बढ़त दिला दी। इसके बाद सेनेगल की तरफ से इस्माइला सार ने 53वें मिनट में गोल किया। एरलिंग हॉलैंड ने 58वें मिनट में गोल कर नॉर्वे को 3-1 से आगे कर दिया। इस्माइला सार ने सेनेगल के लिए दूसरा गोल किया। वहीं एक अन्य मुकाबले में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल

0: में उतरे किलियन एम्बाप्पे के दो शानदार गोल की मदद से फ्रांस ने इराक को 3-0 से पराजित किया। इस जीत ने फ्रांस को राउंड ऑफ 32 में एंट्री दिला दी है। इसके साथ ही एम्बाप्पे 4 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के ठीक पीछे खड़े हैं। फ्रांस के लिए पहला और दूसरा गोल एम्बाप्पे ने किया। इसके बाद माइकल ओलिस ने एक और शानदार पास दिया जिस पर डेम्बेले ने गोल कर अपने करियर का पहला विश्व कप गोल दर्ज किया।
1: Because he works miracles, and he is Lionel Messi. And Argentina leave Austria behind by 2-0. They are through.
0: दिन का पहला मुकाबला स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के नाम रहा, जो न सिर्फ ऑस्ट्रिया के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के नायक बने बल्कि फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। मेसी के 2 गोल की बदौलत मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया पर 2-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने नॉकआउट दौर में भी जगह पक्की कर ली है। मेसी ने मैच के 38वें मिनट में गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। इसके बाद इंजरी टाइम में एक और गोल करके टीम की जीत पक्की कर दी। इस गोल के साथ ही मेसी टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये फीफा विश्व कप में इस महान खिलाड़ी का 17वां और इस वर्ष का 4th गोल था। अपने 39वें जन्मदिन से 2 दिन पहले मेसी ने न केवल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि वे फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जॉर्जिन्हो के बाद लगातार 6 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैस्ट।
2: और फुटबॉल के इस महासंग्राम के बाद अब निशानेबाजी की बात की जाए, जहां जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत पदक जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी स्पर्धा की टीम इवेंट में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की टिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं इस प्रतियोगिता में, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। कार्यक्रम में अब बात हॉकी के मैदान से हॉकी की खबरों की, जहां FIH हॉकी प्रो लीग में लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने मुकाबले में 3-1 की बढ़त बना रखी है। भारत के लिए अभिषेक ने मैच के 21वें मिनट में, नीलकांता शर्मा ने 23वें मिनट में और सुखजीत सिंह ने 39वें मिनट में 1-1 गोल किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से नदीम अहमद ने पाकिस्तान का एकमात्र गोल दागा। वहीं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आज से बेंगलुरु में शुरू हो गया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर हमारी रिपोर्ट।
3: मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आज से बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन जलाहली में शुरू हो गया है। प्रतियोगिता के पहले मैच में भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान को 2-0 से हरा दिया। 3 जुलाई तक चलने वाली इस हॉकी प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग सह नॉकआउट आधार पर ये मुकाबले एयरफोर्स स्टेशन जलाहली स्थित हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 2018 से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस दौरान टूर्नामेंट की विजेता टीम को 10 लाख रुपए और उप विजेता को 8 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रत्येक मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच को 25,000 रुपए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट का नाम वायुसेना के महान मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया है। हॉकी खेल के प्रति मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह का जुनून बेमिसाल था। भारतीय वायुसेना के इस पूर्व अधिकारी ने हमेशा ही वायु योद्धाओं को एक ऐसे वीर के रूप में प्रेरित किया जिन्होंने आगे रहकर नेतृत्व किया, चाहे वे युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान। इस प्रतियोगिता का 6th संस्करण पिछले वर्ष चंडीगढ़ के रघुवीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिनमें 2 अन्य देशों की वायुसेना की हॉकी टीमें सहित कुल 12 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें भारतीय रेलवे ने खिताब अपने नाम किया था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो एक शानदार प्रतियोगिता का आगाज हो गया है और एक प्रतियोगिता का आगाज आज होने को है। US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया के फुलर्टन में शुरू होने जा रहा है। प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे।

0: पुरुष सिंगल्स में विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर काबिज लक्ष्य सेन को दूसरी वरीयता दी गई है और पहले दौर में उनका मुकाबला बेल्जियम के जूलियन कैरागी से होगा। इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ओपन में पहले दौर में बाहर होने के बाद लक्ष्य वापसी करने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू के खिलाफ खेलेंगे। सानिध दयानंद जापान की चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमणियन ने भी मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है और उनका मुकाबला क्वालिफायर से होगा। महिला वर्ग में कुल 7 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा और 6ठी वरीयता प्राप्त देविका सिहाग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 17 वर्षीय तन्वी जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी, जबकि देविका का सामना पेरू की इनेस लूसिया कैस्टिलो सालाजार से होगा। विश्व रैंकिंग में 91 स्थान पर काबिज अनमोल खरब पहले दौर में बुल्गारिया की कालोयाना नलम्बतोबा से भिड़ेंगी। रक्षिता श्री एस का सामना पहले दौर में क्वालिफायर से होगा। अगर वह आगे बढ़ती है तो अगले दौर में उन्हें कनाडा की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिशेल ली का सामना करना पड़ सकता है। श्रियांशी वल्ली शेट्टी अपना पहला मैच कनाडा की राहेल चान के खिलाफ खेलेंगी। तान्या हेमंत का सामना जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी से, जबकि आकर्षी कश्यप का मुकाबला चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग से होगा। महिला डबल्स में भारत की ओर से त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ही चुनौती पेश करेंगी। उनका पहला मुकाबला स्पेन की पाउला लोफेज और लुसिया रोड्रिगेस से होगा। पुरुष डबल्स के ड्रॉ में कोई भी भारतीय जोड़ी शामिल नहीं है। मिक्स डबल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के विरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैप।
1: और अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
2: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस, श्री सविता पूनिया खेल हॉकी, रोहित गुरुनाथ शर्मा खेल क्रिकेट।
1: पद्मश्री से सम्मानित होने पर सविता पूनिया ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताया।
3: खुशी तो बहुत है क्योंकि एक हॉकी में लंबी जर्नी रही है मेरी और काफी हार्डवर्क किया है और टीम की बहुत हमेशा सपोर्ट रही है, फैमिली की सपोर्ट रही है। जब भी कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड मिलता है तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो भी हूँ अपनी टीम की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से हूँ। हमेशा वो जर्नी याद आती है कि आपने खेलना क्यों स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया। तो एक वो टाइम था कि मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था, हॉकी खेलना तो बहुत दूर की बात थी, और आज मुझे राष्ट्रपति भवन में अपनी फैमिली के साथ जाना है तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है।
1: वहीं पद्म भूषण से सम्मानित होने पर विजय अमृतराज ने इस सम्मान के लिए भारत सरकार का आभार प्रकट किया।
4: I think I'm truly honored, I'm thrilled, I'm delighted, humbled by this incredible award by the government of India, the People's Award. The Padma Awards are very, very special. The Padma Bhushan is truly special for me at this stage in my career, and I'm honored. I thank the government of India, I thank the Honorable Prime Minister, and of course, the people of this great country who have helped me perform to the best of my ability, not just in India, but around the world, and it has been a real honor to be able to represent India around the world.
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत केरलम के तिरुवनंतपुरम में साइकिलिंग बाय द सी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज है।
5: Cycling is a best exercise, is a solution of pollution, is a save the fuel, is also solution of traffic. एक cycling में इतना फायदा होता है तो why we are not doing cycling? सभी केरला वासी को आग्रह है कि आपका कामकाज का स्थान दूर न हो तो आप cycling करिए, cycle लेके आपके वर्क प्लेस पर जाइए। सभी कॉलेज और स्कूल के यूथ को मेरा आग्रह है कि अब स्कूल कॉलेज साइकिल लेके जाइए और साइकिलिंग को प्रमोट करके हेल्दी नेशन और वेल्दी नेशन के स्लोगन को साकार करिए।
1: किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व करना उसका सबसे बड़ा सपना होता है। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी

0: पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी का बीसीसीआई ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वैभव पहली बार भारतीय टीम की जर्सी प्राप्त करके बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान वैभव ने कहा कि इस पल को शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
1: जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ। और जो मेन स्टेप होता है वो आज कम्प्लीट हुआ। और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ड्रीम जैसा ही लग रहा था। और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया।
0: और श्रोताओं, आज 23 जून है। आज ही के दिन 2013 में भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बर्मिंघम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।
2: Under 6 from 1, he's got to clear it. Ashwin, 6 in the bank. Treadwell misses, Thorny misses, but it doesn't matter. India win the Champions Trophy as England capitulate. It was their game, England, but it's been a tremendous bowling performance. And Mahendra Singh Dhoni, well, this was the one trophy he didn't have. He's got it now. And India now winners of the ICC Champions Trophy 2013.
0: तो इन्हीं स्मृतियों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय आप हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का

0: देश विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
4: रास लफान परियोजना में जो

0: वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
0: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
0: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिस सेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए।